0: लो की घामानी स्टेज वरती भिजलो की घामानी मी गाडीवर फिरताना कामानी मी गाडीवर फिरताना कामानी
1: तांबडी चामडी ही चमकते उन्हात लाखा